0: अश्विन दोषी, क्या ये राज कपूर की फिल्म थी?
1: ये सर फिर सुबह होगी।
0: अच्छा, आई जस्ट गेस, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राज कपूर के लिए ही गा रहे हैं।
1: ये मुकेश ने उसने राज कपूर के लिए गाया है।
0: जी जी, लग रहा
1: है टोन ही इतना ऐसा ही है।
0: वाह,
1: यस। और साथ में माला सिंहा थी। म्यूजिक था परी जी खयाम साहिब का।
0: वाह, क्या मौसीकार थे।
1: यस, क्या मौसीकार थे। और लिखने वाले सारी लुधियानवी।
0: अच्छा,
1: क्या बोलना है।
0: आप मुझे क्या के दोनों वाकई वाकई ऊंचे पाए के।
1: या फिल्म हिट हुई थी परवीन जी।
0: अच्छा, फिर सुबह होगी।
1: यस, 57-58 में आई थी।
0: ओके, कमाल है।
1: चलो, सभी की एक्टिंग और म्यूजिक सब एक्सेलेंट था।
0: वाह, और स्टोरी कुछ अच्छी थी, मतलब कि स्टोरी
1: yes,
0: कुछ
1: कोई रशियन राइटर्स की स्टोरी उसमें से बनाई थी।
0: अच्छा अच्छा, ओके, रशियन ऑथर ने लिखा था। वाह,
1: रशियन ऑथर,
0: क्या बात है, थैंक यू। और अश्विन सुनते रहिएगा।
1: हाँ जी,
0: और अश्विन भी सुन रहे हैं, प्यार अली भाटिया भी सुन रहे हैं, सो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। यहाँ एक आवाज हम सुन लेते हैं सलमा की।
2: किस राह पर जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है, खुशी के दो पल मिलते हैं तो जी भर के जी लो, कब रूठ जाए खुद से जिंदगी ये कौन जानता है। शुक्रिया, सुबह का प्यार सलाम, सलमा आहमद किसुमो।
0: बहुत खूब सलमा मंजुला विश्वकर्मा।
3: सबको नमस्कार परवीन जी, आज आप मुकेश के गाने सुनाने वाली है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मुकेश के गाने, बहुत ही पता नहीं उनकी आवाज में कुछ तो बात है, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं आज सुबह की शुरुआत एक जोक से करना चाहती हूँ। एक आदमी होशियारी झाड़ रहा था, लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, वो ऐसी होशियारी झाड़ रहा था, लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को, तभी पीछे से आकर एक कुत्ते ने उसे काट लिया।
0: लोहे को काटता और कुत्ता कुत्ते को काटता, कुत्ते ने पहचान लिया है। वाह, क्या बात है मंजुला विश्वकर्मा, रोजाना एक जोक हो जाए सुबह सुबह आपका और मनर का, क्या बात है। और लेते हैं एक ब्रेक।
4: Kenya's premier Asian mix,
5: East FM,
4: is celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
5: East FM,
4: Kenya's premier
5: Asian mix.
6: It's 10:19.
7: When your family's name is on the door, business is personal. You need to govern wisely to protect what you've built, fund seamlessly to keep your daily momentum going, expand fearlessly into new markets and offshore opportunities. Plan ahead so the next generation can succeed proudly and partner deeply with experts who understand the weight of your legacy.
8: Stanbic family-owned business banking, where family means business. Let's write the next chapter of your family-owned business together. Visit www.stanbicbank.co.ke today. Stanbic Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
5: East FM.
4: East FM.
9: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: अश्विन जोशी. अच्छा था ये भी, काफी पॉपुलर हुआ गाना.
1: प्रवीण जी, दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट मुकेशिस.
0: अच्छा.
1: या फिल्म थी वो, पहले हमने बताया था सरस्वती चंद्र.
0: अच्छा, सरस्वती जी.
1: यस, या विच इज विच वॉज बेस्ड ऑन द गुजराती नॉवेल इन फोर वॉल्यूम्स.
0: या
1: ये नूतन वॉज द मेन हीरोइन. Huh. And hero was Manish, who came for only one movie and then disappeared.
0: Us zamane mein Ashwin wo heroine had no say in who is chosen to play the opposite role.
1: It depended who the heroine was, because heroine kabhi jo zordar thi to wo bol sakti thi.
0: बिल्कुल.
1: और जो ऐसी थी तो, और सम हीरोइंस आल्सो एनकरेज न्यू पीपल टू कम एज वेल.
0: अच्छा. ये यही हुआ.
1: दे वन ऑफ देम वाज नंदा जी. नंदा ऑलवेज उनको नंदा है प्लेड ए वेरी बिग पार्ट इन एनकरेजिंग शशि कपूर. पर
0: उफ, क्या बात है.
1: या नंदा ऑलवेज फेवर्ड. And they always accepted, and even she Shashi Kapoor ki jo thi career, usme Nanda ka bada part tha.
0: Ji ji. Aur inki jodi achhi bani thi.
1: Achhi bani. Yeah, achhi bani. They were good friends.
0: Yes.
1: I mean, off screen.
0: Right.
1: So, to aisa hi hota tha. Lekin sir, ye Parin ji हिट हुई थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी.
0: अच्छा.
1: जब भी सभी फिल्म कलर आती थी
0: तभी ब्लैक एंड व्हाइट.
1: फिर भी हिट हुई. म्यूजिक नूतन की एक्टिंग एंड म्यूजिक था क्या कल्याण जी आनंद जी का था.
0: अच्छा.
1: या और गीत लिखे थे सभी हिंदी पर.
0: बहुत खूब. अभी आनंद जी अलाइव है? नहीं,
1: आनंद जी है.
0: आनंद जी
1: छोटे भाई आई थिंक इज अबाउट 90.
0: राइट.
1: ओके,
0: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.
0: और अगला कौन सा गाना हमने लिया है? पहले तो ये देखें कि सोनल ने भी करेक्ट आंसर दिया था, मंजुला विश्वकर्मा ने भी करेक्ट, रितु गुप्ता ने सही जवाब दिया था, और रसीला ने पूरी जानकारी जो भेजी है थोड़ी देर के बाद. सलीम मेहर, परवीन जी गुड मॉर्निंग टू ऑल द बेमिसाल अंदाज लिसनर्स, हैव अ लवली डे. और कहा एवरीवन हैज अ फ्रेंड ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ हिज लाइफ, बट ओनली लकी वंस हैव द सेम फ्रेंड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ. बिल्कुल. कल्पना, आपने कहा है फूल तुम्हें भेजा है खत में. बोथ द एक्टर्स आर इन देयर लैंडलाइन फोन्स एंड ब्लशिंग, लुक सो रोमांटिक. कल्पना, यू आर राइट. और कहते हैं इन द डेज ऑफ व्हाट्सएप वी डू सेंड फ्लावर इमोजीज, बट डज इट मेक द सेम? नॉट एट ऑल. इट डजंट हैव द सेम इफेक्ट. कल्पना, और आपने कहा है कि दिस कम्युनिटी इफ दे मैरी आउटसाइड दे आर नॉट कंसिडर्ड dash anymore, they are not allowed inside the fire temple. Really, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से लोग हैं.

और अभी कृष्ण सरोय ने कहा है कि अगर कोई पारसी औरत किसी गैर पारसी के साथ शादी करती भी है तो वो बच्चा पारसी माना जाता है, लेकिन मैंने ये इसका बरक्स ही सुना है, इसका ऑपोजिट हिस्सा, तो आंसर पारसी था। और रसिला, आपने कहा दे आर अ टाइट निट ज़ोरोएस्ट्रियन एथनो रिलीजियस कम्युनिटी, जी हाँ, इनके धर्म पर ये जुड़े हुए हैं। नंबरिंग अबाउट दे आर नाउ फ्यूअर देन 60,000 descended from Persian refugees who fled religious persecution in the 7th and 8th centuries. They settled primarily in Gujarat and Mumbai, punching far above their weight in business, science, public services. और कहती हैं रसिला, कॉलेज दिनों से आज तक मेरी इतनी पारसी दोस्त हैं। बहुत अच्छे, वंडरफुल के आपने दोस्तियां निभाई हैं, कमाल है, बहुत कम लोग निभाते हैं दोस्तियां। अच्छा, चिराग पटेल ने कहा था मुकेश के बारे में कि उनका निधन यूएसए डिट्रॉयट में हुआ था, लता के साथ एक कॉन्सर्ट पर गए हुए थे। जी चिराग पटेल, थैंक यू। और पारसियों की बात करें तो अमीर कुछ शेर सुनाता हूँ, ये उनसे मुखातिब हैं। उफ, व्हाट अ सॉन्ग, ये वो भी करते हैं। और लेकिन अभी अभी जो कहा था कल्पना ने कहा था कि ये जो फूल तुम्हें भेजा है खत में,

0: और समय हमें एक पारसी मिल गई हैं, हमारी लिसनर हैं, आप सब उनको जानते हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि आज सवाल पारसियों पर है तो क्यों ना उनसे बात की जाए कि अगर एक पारसी औरत गैर पारसी के साथ शादी करती है क्या उसका बच्चा पारसी कहलाएगा या नहीं। जी पारो चोड़ा,
1: वेरी गुड मॉर्निंग मैडम प्रवीण आदम एंड ऑल योर एस्टीम लिसनर्स।
0: गुड मॉर्निंग पारो।
1: राइट, yes, you wanted to know something about
0: about the Parsis. The question that I asked you, yeah.
1: Now what do you want to ask me?
0: I said, well, if there's some listener, Krishan Sarve, he said, even if a Parsi woman gets married outside the community, has a child, it will be considered a Parsi?
1: Look, it can only be considered a Parsi. They're trying to bring it, but I don't know whether they've already brought the law in.
0: No.
1: The child has to be Christian, a Parsi, ceremony called Navjot. And that ceremony takes place after the age of 12. Boys and girls, and you are clad with a malmal a thing, and it is put over you with a thread called kasti, made of 72 strands.
0: Oh, I see. Okay.
1: And until the child can pray by itself, then it is admitted in the Parsi religion.
0: Right. But otherwise, the name is passed on through the father, the lineage.
1: The father. Like in my case, if I had a son my daughter was not a Parsi.
0: Yeah.
1: My husband was a staunch Singh and she adheres to the holy Singh religion.
0: Oh, I see.
1: Right. And I am happy. And I am happy with it.
0: Great.
1: वाह बोलते हैं कि भाई लोग का रिलीजन नहीं होते, आदमी लोग का रिलीजन,
0: आदमी लोग का. ओके ओके पारो, थैंक यू.
1: नॉट एट ऑल, थैंक्स फॉर पुटिंग द पारसी रिलीजन
0: ऑन एयर. ओके, अब देखें कि क्या क्या कहा है हमारे लिसनर्स. चंद्रिका वासंत गोसाई
2: जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. सरस्वती चंद्र का गीत सुनकर बहुत आनंद आ रहा है. थैंक यू वेरी मच. चंद्रिका वसंत गोसाई.
0: ओके, और आपके साथ हैं सना काना, आप एंजॉय कर रही हैं म्यूजिक, वंडरफुल. डॉक्टर रजिंदर प्रसाद
3: प्रवीण जी, इनके जो सदनी जो होते हैं जैसे लाइक बाटली वाला, झुनझुन वाला, पोस्ट वाला, दारू वाला, तो ये अपने नाम के पीछे ही अपना सरनेम लगाते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ जो प्रोफेशन होता है उसका ये सरनेम यूज कर लेते हैं. दूसरा, ये पैसे के मामले, ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं और करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति तक ये लोग पहुंचे. और बॉलीवुड के अंदर ये बहुत पहले छाए हुए थे, एक प्राइम पिलर थे जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, सौरभ मोदी, ये भी पारसी ही थे. और अब जैसे अरुणा ईरानी है, डीनू मौर्या, जॉन इब्राहिम, ये मतलब कहीं ना कहीं से मतलब कि इनका कोई लिंक है ये पर्शियंस.
0: तो डॉक्टर साहब, इस तरह से सौरभ मोदी को फिल्म वाला कहना चाहिए, सौरभ फिल्म वाला, क्योंकि आपने कहा पेशे से अपना नाम रखते थे, है ना.
4: अस्सलाम वालेकुम सबको, गुड मॉर्निंग. आपने आज बहुत पुरानी याद दिला दी, 1983 की बात है जब मेरी और शबीर की बात पक्की हुई थी. तो एक दूसरे के उस वक्त तो कागज लिखते थे ना, कोई मोबाइल ऐसा फोन कुछ नहीं था. तो उसने कागज ऐसा लिखा, इसमें ये गाना था, सौरभ लिख कर भेजा, बोलते देख मैं तुझे इसमें फ्लावर भी भेज. और सचमुच उसने नियरी से रोज फ्लावर्स का पेटल्स डालकर मुझे पोस्ट ऑफिस में भेजा. आई एम टॉकिंग ऑफ 1983 मई 17th को आफ्टर आवर एंगेजमेंट. आज बहुत खुश हो गए इसको याद किया आपने. मैं भी बहुत
0: जी. रुखसाना उस जमाने की बात कर रही हैं. ये फूल तुम्हें भेजा है खत में, कहते वही हुआ आपके साथ, मंगेतर ने भेजा था फूल, भेजे थे पत्तियां, भेजी थी गुलाब की, बहुत अच्छे. और अब यहाँ पर टुडे इन हिस्ट्री आ गया है, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है.
5: ईस्ट एफएम केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स,
6: the spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
7: Join S3 Education Visa Talk at Park Kane by Radisson Westlands for expert visa guidance. Can't attend? Join our webinar on 11th August for further support. To access 2026 University Placement Support, visit our Westlands or Ridgeway offices today or call 0750-594-444.
8: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's Premier Asian Mix.

0: अच्छा अश्विन, क्या ये एक गाना था जो मुकेश का राज कपूर पर नहीं फिल्माया गया था?
1: नहीं, ये था दिलीप कुमार पे फिल्माया गया था, ये फिल्म मिला
0: बिल्कुल,
1: जिसमें दिलीप कुमार और नीतीश प्रिंसिपल स्टार्स,
0: राइट।
1: लेकिन मुझे ये भी आपको बोलना था कि ये वन ऑफ द फ्यू मुकेश सॉन्ग्स विच वेर अंडर नौशाद अली'स डायरेक्शन।
0: अच्छा अच्छा, नौशाद
1: मेला में थे, अनोखी अदा में थे, फिर अंदाज में थे।
0: ओके,
1: ये तीन चार फिल्म में ऐसा इन लेट 40s में किया। फिर नौशाद अली स्विच टू मोहम्मद रफी ओनली।
0: अच्छा ओके,
1: तो यू नो दिस इज एंड दिस जो भी मुकेश ने नौशाद अली से गाया सभी हिट हुए। अंदाज के गाने तो
0: ऑफ कोर्स वी ऑल नो, ब्यूटीफुल,
1: या ब्यूटीफुल। तो आई डोंट नो व्हाई व्हाटएवर इट वाज
0: बट दे स्टॉप्ड।
1: Yeah. फिर भी मोहम्मद रफी he was a very talented playback singer as well.
0: Right.
1: So no regret, but we would have liked a mix, you know.
0: And
1: it would have been a better choice.
0: बिल्कुल, क्या बात है, अच्छी कहानियां, थैंक यू। और अश्विन दोषी बता रहे थे कि सामने कितना कम नौशाद और मुकेश की टीम रही। अब देखें तो आगे, टुडे इन हिस्ट्री 1985 जापानीज एयरलाइन समन जाल का 747 हवाई जहाज एक पहाड़ में क्रैश होता है, कितने लोग मरते हैं। 1985 की बात है, आज का दिन 520 समेत 520 मौतें हुई थी, जापानीज एयरलाइन बोइंग 747 था। और आज इंटरनेशनल यूथ डे भी है, ऑब्जर्व्ड एनुअली इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट्स एंड अदर्स टू ड्रॉ अटेंशन टू यूथ इश्यूज वर्ल्ड वाइड। और आज इंटरनेशनल एलिफेंट डे भी है, क्या बात है। यासर, थैंक यू सो मच। और मिसेस धंजल, गुड मॉर्निंग परवीन जी, ऑल लिसनर्स ईस्ट एफएम, वंडरफुल प्रोग्राम, आई एम एंजॉयिंग। रसिला परवीन जी, रतन टाटा हु हैज डाइड 886 वाज ऑफ इंडियाज मोस्ट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस लीडर्स, द टाइकून लेड द टाटा ग्रुप। और आज मेरे ख्याल है टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने ही रिजाइन कर दिया है, वन ऑफ देम। Anyway, his family's contribution to India's economy is amazing. Ratan Tata. Bilkul, hamesha hum Ratan Tata ka zikr karte hain aksar. Mr. Mehta, enjoying Mukesh's songs. Mr. Mehta from Embu. I'm so happy. Aur Manjula Vishwakarma bhi kuch kehti hai.
2: Sarveen ji, aise to aap sabhi gaane bahut achhe laga rahi hain. Par agar wo Madhumati ka laga denge to... मुझे अच्छा लगेगा, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। परवीन जी, जो अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा ना सरनेम के बारे में, तो वो सब सरनेम तो यहाँ पर जो बोरी मुस्लिम होते हैं ना, बोरा समाज के, उनके सरनेम हैं यहाँ पर, जैसे कि कांच वाला, बूट वाला, घी वाला, बंदूक वाला, टोपी वाला, कारपेट वाला, मतलब इनका जो बिजनेस होता है बस उसमें वाला लगा के ये अपना सरनेम बना लेते हैं, ऐसा मुझे लगता है परवीन जी। ये यहाँ पर क्योंकि पूना में बहुत है,
0: कुल बाटली वाला भी होगा वहाँ कहीं ना कहीं, बाटली वाला होगा और शक्कर वाला तो नहीं हो सकता, नमक वाला होगा कुछ ना कुछ, चाय वाला तो कुछ और ही है। अब एक फरमाइश आई थी,

0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: और सामने टेलीमार्केटिंग कॉल्स, मैंने कहा क्या है टेलीमार्केटिंग कॉल्स? सामने फ्रांस में इन पर बैन कर दिया है, फ्रांस ने कहा है कि ये बिल्कुल नहीं, ये तंग कर रहे हैं लोगों को। पर ये टेलीमार्केटिंग कॉल्स हैं क्या? सबसे पहले जवाब दे दिया है चिराग पटेल कराटीना से, पर आप कोशिश करें, मैं एक फरमाइश पूरी कर दूं मंजुला की।

और केरोसिन वाला भी था, किसने कहा है कि केरोसिन वाला, वो बेचता होगा ना केरोसिन। जी शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और यास्मीन और मेजर वांजा बहुत शुक्रिया आपका। समझ टेली मार्केटिंग कॉल्स कैसी कॉल्स होती हैं, क्यों लोगों ने कहा है कि बंद करो टेली मार्केटिंग कॉल्स।

और एको हो जाता तो मजा आ जाता, पर क्या कमाल का गाना है। और यहाँ पर हैं रंजन विनोद ने कहा है गुजराती का होना चाहिए, गुजराती के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, टीना, टीना आपने कहा है कि टेली मार्केटिंग ये है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और फातिमा शमून, आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू से फ्यू वर्ड्स ऑन एयर इन योर वॉइस इन योर वे, थैंक यू। टुडे माय डॉटर ज़हाबिया शमून हैज ग्रेजुएटेड, ओ हर ग्रेजुएशन सेरेमनी इज गोइंग ऑन, ongoing hai graduation ceremony, I mean what a pride, proud moment for a parent. I'll be very happy if you say as East FM is best parivar. Fatima Shamoon, hum hamesha aapke saath hain, aapke khushiyon mein, aapke dukh mein, aap itni achhi listener hain, to aapne kaha East FM is the best channel, so hum mubarakbad dete hain on the graduation of your daughter Zahabia Shamoon, और खुदा उसे तरक्की दे, इससे भी ज़्यादा तरक्की दे। तो चलिए समझ लो, आप चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है।

टेली मार्केटिंग की बात बाद में करेंगे, पहले हमने रंजन विनोद की जो है फरमाइश पे गुजराती का गाना सुनाना।

0: और हितेन इन यूनाइटेड किंगडम कहते हैं अगर आपको कोई ऐसी टेली मार्केटिंग कॉल आती है डू नॉट आर्ग्यू और प्रेस एनी बटन्स डोंट एंगेज विद द कॉलर प्रेसिंग नंबर्स कैन कंफर्म योर लाइन इज एक्टिव एंड रीडायरेक्ट यू टू हाई कॉस्ट सर्विसेज कहते हैं कभी कोई फोन का वो जो बटन है ना दबाएं बात ना करें प्रोटेक्ट योर डेटा नेवर रिवील योर फुल नेम बैंकिंग इंफॉर्मेशन पासवर्ड और होम एड्रेस ब्लॉक द नंबर ये है बेस्ट तरीका ब्लॉक द नंबर क्योंकि आपके बिल्ट इन सेटिंग्स हैं टू ब्लॉक बहुत अच्छे हितेन फ्रॉम यूके बहुत शुक्रिया आपका
1: अरविंद जी आज आपने बहुत अच्छे अच्छे मुकेश के गाने लगाए जो आप अक्सर नहीं लगाती हैं और सुहाना सफर के लिए आपको धन्यवाद और अभी भी जो गाना बज रहा है मज़ा आ गया भाई सुन के किसी नरगिजी नज़र को दिल देंगे हम बहुत अच्छा गाना है
0: वाह मंजुला विश्वकर्मा थैंक यू दिनेश पोपट कहते हैं एक एक पल और आपने मैं इंजॉय कर रहा हूँ दिनेश पोपट सिडकप लंदन जो कहा है आपने भक्ति का वो ज़रूर ध्यान में रखूँगी और
2: जी क्या खूब कहा किसी ने चुप रहोगे तो बात कौन करेगा चुप रहोगे तो बात कौन करेगा हम ना रहे तो याद कौन करेगा माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं माना कि हम इतने अच्छे नहीं हैं अगर हम ना रहे तो आपको परवीन जी परेशान कौन करेगा बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी मैंने कहा गैप ना पड़ जाए आज का तो कुछ कह देते हैं और धन्यवाद परवीन जी आज के लिए इतना ही मुलाकात होगी कल
0: वरना जयपाल आपको एब्सेंट करा दे दिया जाता अच्छी बात है आप आ गए हैं सर मैं चलती हूँ आगे नीलूफर आ रही हैं रेट्रो टू राइट नाउ में 3 घंटे का प्रोग्राम सुनिएगा कल मेरी और आपकी मुलाकात होती है
3: मुझे